0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है स्वर्ग उद्ग्रहण ख्रिस्त्याग में संत पापा लियो का दिया गया प्रवचन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो 14 ने कस्तल गंदोल्फो के विला नोवा पल्ली में माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का ख्रिस्त्याग अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा कि मैं अपार खुशी से आप सबों के संग पुनः इस वर्ष माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का महोत्सव मनाता हूँ। कलिसक धर्म सिद्धांत हमें यह शिक्षा देती है कि पृथ्वी पर अपनी जीवन यात्रा समाप्त करने के बाद वह शरीर और आत्मा में स्वर्गीय महिमा में उठा ली जाती है। इस भांति यह हमें निष्कलंक गर्भागमन में उन्हें प्राप्त सर्वश्रेष्ठ कृपा की परिपूर्णता के रहस्य को व्यक्त करता है। संत पापा लियो ने कहा कि इस कारण बहुत से कला के कार्य उन्हें सुंदर युवा नारी स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, जो पृथ्वी पर अपने जीवन की समाप्ति उपरांत शारीरिक रूप में स्वर्ग की ओर उठाई जाती है। इन कलाकृतियों को हम प्रकाशना ग्रंथ की पुस्तिका में वर्णित दृश्य से प्रभावित पाते हैं, जिसे हमने पहले पाठ में सुना। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। यह हमारे लिए इस बात की ओर इंगित कराता है कि मरियम के हृदय में स्वर्ग और पृथ्वी, समय और अनंत का मिलन होता है। इस पृथ्वी पर यह निशानी हमारे समय के बीतते अनुभवों के संग विरोधाभाव जान पड़ती है। जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं, हमारे शरीर फुर्तीले नहीं रह जाते हैं, हमारी त्वचा ताजी नहीं रह जाती है, बल्कि हम उनमें बुढ़ापे की निशानी को पाते हैं। हमारे केश चमकदार नहीं रह जाते हैं, अपितु वे भूरे और सफेद हो जाते हैं। अतः कलिसियाओं की वेदी में प्रस्तुत किए गए सुंदर युवा नारी के संग हम अपनी कौन सी समानता को पाते हैं? संत पापा लियो ने कहा कि इस तथ्य को समझने हेतु हमें अपने को दो निशानियों के संग संयुक्त करने की जरूरत है, ईश्वर की माता का अनश्वर शरीर और उनका निष्कलंक हृदय। यह हृदय की पवित्रता है जो मरियम में और हम में ईश्वरीय कृपा में व्याप्त रहती है, जो पूरे व्यक्ति को प्रज्वलित और परिवर्तित करती है। यह हमें स्वर्ग राज की महिमा में ले चलती है। मरियम का शरीर और आत्मा में महिमान्वित किया जाना हमें इस बात की शिक्षा देती है कि हमारी सच्ची सुंदरता बुढ़ापे की

निशानी को छुपाने में नहीं है, लेकिन प्रेम की निशानी को व्यक्त करने में है, जो कभी खत्म नहीं होती, जिसका प्रभाव कठोर और ठंडा है। सच्ची सुंदरता किन बातों में निहित है, उन्हें देखना सहज है। वहीं दूसरी ओर हम अब तक एक परिवर्तन, क्षमा और चंगाई की आवश्यकता को पाते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि यदि हम सच्चे अर्थ में दिव्य सुंदरता को खोजना और उसे अपने में पोषित करने की चाह रखते हैं, जो हमें घेरे रहती है और जिसके लिए हम बनाए गए हैं, जिसे हमें दूसरों के संग साझा करना है, तो हमें उसे एक बुजुर्ग की झुर्रियों और एक बालक के कोमल चेहरे में देखने हेतु सीखने की जरूरत है। हम उसे एक प्रौढ़ व्यक्ति में और एक युवा के जीवन की सजीवता में, उसे कपड़ों और औजार साथ ही त्योहारों के श्रृंगारों में देखने की जरूरत है। हमें उन्हें अद्वितीय प्रेम की कहानियों में सुनने की जरूरत है, जो सच्चाइयों को हमें बतलाते हैं, जहां हम स्वर्ग की छोटी झलकों को पहचानते हैं। प्रेम मानव का अति सुंदर श्रृंगार है। प्रेम हमें रूपांतरित करता, बदलता, योग्य बनाता और हमें ऊपर उठाता है। यह हमें भार विहीन, स्वतंत्र और ईश्वर के निकट लाता है, यहाँ तक कि हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में भी। संत पापा ने कहा, स्वर्गोद्ग्रहण के रहस्य पर चिंतन करते हुए उसके अर्थ को समझने हेतु संत पापा पॉल छठवें कहते हैं कि हम पृथ्वी और भौतिक भाषा में उपयोग की जाने वाली अपनी अभिव्यक्तियों को अतिशयोक्ति और पूर्णता में बदलें, जिससे हम दिव्य की कल्पना एक छोटे रूप में कर सकें। ईश्वर की माता में अलौकिक और लौकिक के बीच मिलन के संबंध में संत पापा फ्रांसिस लिखते हैं, मरियम एक अस्तबल को यीशु के घर में बदलने की योग्यता रखती, जिसमें गरीब बच्चे को लपेटने का एक वस्त्र और एक अपार प्रेम था। संत पापा ने कहा कि नाजरेत की कुमारी मरियम ने जिस चमत्कार को अपने निर्दोष हृदय में अनुभव किया, जो चरम सीमाओं का मिलन है, वह उसे स्वर्ग की महिमा हेतु अग्रसर करता है, जैसे कि वह अपने ईश महिमा में व्यक्त करती है। इस ईश गुणगान में अपने नम्र विश्वास की अभिव्यक्ति द्वारा ईश्वर की माता हमें अपनी सरलता में महिमामय रहस्य को व्यक्त करती है, जैसे कि ईश्वर उनमें मानव बने, जिससे वे मानवता को बचा सकें। इस तरह दिव्य समय के साथ मुक्ति के मार्ग को हमारे लिए वे खोलते हैं। इसके साथ ही एक नम्र सेविका के रूप में संत पापा पॉल छठवें कहते हैं कि मरियम हमारे लिए नम्र आयाम को व्यक्त करती है, जिसके द्वारा हमारा मेल भी ईश्वर से हो सकता है। जिस रहस्य का हम आनंद मनाते हैं, संत पापा ने कहा, उसकी महानता को जानने के लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा इससे मिलन तब होता है जब कभी हम अपने में सच्ची करुणा को पाते हैं। उदाहरण के लिए, एक माता और पिता की आंखें, जो लंबे समय के बाद घर लौटते हैं, थके होते हुए भी वे अपने संतानों के संग खुशी का अनुभव करते हैं। दादा दादियों और नाना नानियों के चेहरे अपने दर्द और बुजुर्गावस्था के दुखों में भी वे नाती पोतों की देखरेख में एक आश्चर्यजनक शक्ति से अपने को भरा पाते हैं। युवाओं की निष्ठा, जहां वे नैतिकता और स्थिरता में बढ़ने की कोशिश करते हैं, वे अपने में लाभ से परे जाने को तैयार रहते हैं। अंततः बहुत सारे नर नारियों के दैनिक जीवन में विश्वास और समर्पण इस पृथ्वी पर स्वर्ग को और स्वर्ग को पृथ्वी के निकट लाती है। प्रिय मित्रों, संत पापा लियो ने कहा, स्वर्गोद्ग्रहण में हमारी कुमारी मरियम का चेहरा अद्वितीय है। यह किसी भी संभव स्वरूप की प्रस्तुति से परे है, और इसके बावजूद यह हमारे लिए परिचित है। हम उनके चेहरे को अपनी बगल में बैठे व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं, उन भाई बहनों में जिनके संग हम विश्वास में अपने जीवन को साझा करते हैं। यही कारण है कि विश्वासियों का समुदाय उस नारी को प्रकाशना की पुस्तिका में देखता है, और द्वितीय वैटिकन महासभा मरियम की व्याख्या कलिसियाई शुरुआत की निशानी स्वरूप देखती है, आशा और सांत्वना की एक निश्चित निशानी स्वरूप। उनके मानवीय प्रकृति में ईश्वर की कृपा से हम अपने स्वरूप को देखते हैं, अतः हम भी उस कृपापूर्ण जीवन को जीने हेतु बुलाए गए हैं, जिसे उन्होंने जिया और अपनी महिमा में

आशा किया। ख्रिस्त के पुनरुत्थान की चर्चा करते हुए संत अगस्टिन ख्रिस्तियों से आग्रह करते हैं कि वे उसे अपने जीवन की दिशा और केंद्र बिंदु बनाएं। वे कहते हैं, ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे जिससे वे पुनः न मारें, हम दिशा बदल सकें, ज्योति का अनुसरण करें, उसी स्थान से उठने की शुरुआत करें जहां से वे उठे। संत पापा लियो ने कहा कि आइए हम इस निमंत्रण को स्वीकार करें, हम उस पुनर्जीवित यीशु की ज्योति का अनुसरण करें और अपने जीवन यात्रा को बदलें यदि ऐसा करने की जरूरत है। हम विशेष रूप से आज ऐसा करें मरियम की ओर निहारते हुए, जिन्हें ईश्वर ने शरीर और आत्मा में महिमान्वित किया है और जिसे उन्होंने माता निर्देशिका हमारी जीवन यात्रा में मित्र और स्वर्ग राज्य के मार्ग में एक संरक्षिका के रूप में दिया है।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कुंवारी मरियम के स्वर्गोत ग्रहण महापर्व के अवसर पर पोप लियो 14वें ने चिंतन किया कि यह मानव के अंतिम लक्ष्य अनंत जीवन को प्रकट करता है। पोप लियो 14वें ने 15 अगस्त कुंवारी मरियम के स्वर्गोत ग्रहण महापर्व के अवसर पर कस्तिल गंदोल्फो में देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। उन्होंने प्रार्थना से पहले विश्वासियों को संबोधित कर कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम धन्य कुंवारी मरियम के स्वर्गोत ग्रहण का महापर्व मना रहे हैं। पोप ने इस विश्वास के रहस्य पर चिंतन करने के लिए उन दो प्रतीकात्मक मॉडल को प्रस्तुत किया जिनका इस्तेमाल कलाकारों ने सदियों से इस घटना को दिखाने के लिए किया है। पहला, ईश माता के निद्रावस्था की तस्वीर। उन्हें एक ताबूत पर लेटे हुए मौत की नींद सोते हुए दिखाया गया है। उनके चारों ओर प्रेरित प्रार्थना की मुद्रा में उनका सम्मान करते हैं और बीच में पुनर्जीवित यीशु हैं, जो एक नवजात शिशु की तरह मरियम की आत्मा को अपनी गोद में लिए हुए हैं। संत पापा ने कहा, यीशु उन्हें ईश्वर की महिमा में अपने साथ ले गए, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। इस तरह प्रभु ने अपनी माँ के लिए वह वादा पूरा किया जो उन्होंने अपने सभी मित्रों से किया था, मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। संत पापा ने कहा, पहला मॉडल उस मुख्य सच्चाई को दिखाता है कि मरने और पुनर्जीवित होने के बाद ख्रिस्त ही हमें उस मंजिल तक ले जाते हैं जिसके लिए हमें बनाया गया है, अर्थात अनंत जीवन। हाल में बनी तस्वीर जो पश्चिम में विकसित हुई है, कुंवारी मरियम को पूरे कद में स्वर्ग में रोशनी से लिपटी हुई दूतों और संतों के बीच दिखाती है। तस्वीर के केंद्र में कुंवारी मरियम का महिमा मंडित शरीर है, जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है। संत पापा ने गौर किया कि कुछ कलाकारों ने दोनों विचारों को मिलाकर तस्वीर के ऊपरी भाग में महिमा मंडित माता मरियम को दिखाया है और नीचे उनकी खाली कब्र को, जो अक्सर रंग बिरंगे फूलों से भरी है और स्वर्ग में प्रेरित उन्हें देख रहे हैं। दूसरे मॉडल के बारे बतलाते हुए संत पापा ने कहा, दूसरा मॉडल उस सच्चाई को दिखलाता है कि मरियम शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग उठा ली गई अपने व्यक्तित्व की संपूर्णता में। महिला जिसने पृथ्वी पर शब्द के शरीर धारण में मांस और रक्त दिया और प्रेम बलिदान में पूरी तरह एक होने तक उनका अनुसरण किया और फिर उनके द्वारा हमेशा के लिए महिमा में ले ली गई। संत पापा ने कहा कि यह तस्वीर हमें अपने अंतिम लक्ष्य के बारे चिंतन करने का मौका देती है। देवदूत प्रार्थना के बाद संत पापा ने उन सभी लोगों को मरियम की मध्यस्थता को सपोर्ट किया जिन्हें आशा और सांत्वना की आवश्यकता है। पोप ने हाल ही में आए भूकंप से प्रभावित कोलंबिया के लोगों के लिए भी अपनी प्रार्थना दोहराई। भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस रोम स्थित भारतीय दूतावास में देशभक्ति एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारतीय समुदाय के सदस्य, दूतावास के अधिकारी और खास मेहमान इस ऐतिहासिक मौके को मनाने के लिए एकत्रित हुए। इटली और सन मरीनो में भारत की राजदूत वाणी राव ने सुबह 8 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया गया, जिससे माहौल देश की आज़ादी और तरक्की के लिए गर्व एवं आभार से भर गया। अपने भाषण में राजदूत राव ने इटली में रहने वाले भारतीय समुदाय की सेवा और समर्थन के लिए दूतावास के चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए भारत और इटली के बीच मजबूत एवं बढ़ते संबंधों के बारे में चर्चा की।
1: पापुआ न्यू गिनी में 14 से 17 अगस्त तक बोगनविले धर्म प्रांत के उत्तरी क्षेत्र में कैथोलिक मिशनरी उपस्थिति का 125वां साल गिरह मना रहा है। कलीसिया ने देश में एक सदी से भी ज्यादा समय तक मुश्किलों और लड़ाइयों का सामना किया है और यह 35 पल्लियों में 2,00,000 से ज्यादा कैथोलिकों का एक जीवंत स्थानीय समुदाय के तौर पर विकसित हुआ है। पापुआ न्यू गिनी दुनिया के सबसे ज्यादा सांस्कृतिक रूप से अलग अलग तरह के देशों में से एक है, जहां 800 से ज्यादा भाषाएं और कई जाति और आदिवासी समुदाय है जो एक दूसरे से भिन्न है और गहरी एकता का जरिया है। उधर आज सुबह शनिवार पूर्वी इंडोनेशिया में आए 7.7 तीव्रता वाले भूकंप में मरने वालों की संख्या कम से कम 38 हो गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के नए अपडेट के मुताबिक 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 11 अन्य को मामूली चोटें आई हैं और लगभग 2,000 लोग बेघर हो गए हैं। भूकंप का केंद्र फ्लोरेंस द्वीप के पास इंडे शहर से लगभग 68 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर की गहराई पर था। अधिकारियों ने शुरू में कई प्रांतों के लिए सुनामी की चेतावनी दी थी और तटीय इलाकों के लोगों से ऊंची जगहों पर जाने को कहा था। बाद में निगरानी प्रणालियों द्वारा समुद्र के स्तर पर कोई खास बदलाव न पाए जाने पर चेतावनी हटा ली गई। बिजली जाने और संचार की दिक्कतों के कारण जानकारी इकट्ठा करने और खोज एवं बचाव कार्य धीमे चल रहे हैं। कई हॉस्पिटल से मरीजों को सावधानी के तौर पर बाहर निकाला गया और कुछ समय के लिए इलाज की जगहें बनाई गईं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने भी मदद पहुंचाने और मुश्किल जगहों से लोगों को निकालने में मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा। उधर यूक्रेन की नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर पिछले महीने संघर्ष से 183 यूक्रेनी बच्चे प्रभावित हुए। जून की तुलना में जब 127 पीड़ित थे, यह 50% की बढ़ोतरी दिखाता है और जमीन पर युद्ध बिना रुके जारी है। यूक्रेन के मारहेंस शहर में एक रिहायशी भवन पर हुए रूसी हमले में एक 3 महीने के बच्चे की मौत हो गई। एक नवजात एक ऐसे युद्ध का सबसे नया शिकार जो सबसे छोटे बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है। इस हमले में 11 और लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 7 को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें 2 और छोटे बच्चे भी हैं, 5 और 12 साल के। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि हाल के हमलों में सबसे छोटे बच्चों को निशाना बनाया गया। अकेले जुलाई में रूसी युद्ध के कारण यूक्रेन में 183 बच्चे मारे गए या घायल हुए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है स्वर्ग उद्ग्रहण ख्रिस्त्याग में संत पापा लियो का दिया गया प्रवचन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो 14वें कस्तल गंदोल्फो के विला नोवा पल्ली में माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का ख्रिस्त्याग अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा कि मैं अपार खुशी से आप सबों के संग पुनः इस वर्ष माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का महोत्सव मनाता हूँ। कलिसक धर्म सिद्धांत हमें यह शिक्षा देती है कि पृथ्वी पर अपनी जीवन यात्रा समाप्त करने के बाद वह शरीर और आत्मा में स्वर्गीय महिमा में उठा ली जाती है। इस भांति यह हमें निष्कलंक गर्भागमन में उन्हें प्राप्त सर्वश्रेष्ठ कृपा की परिपूर्णता के रहस्य को व्यक्त करता है। संत पापा लियो ने कहा कि इस कारण बहुत से कला के कार्य उन्हें सुंदर युवा नारी स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, जो पृथ्वी पर अपने जीवन की समाप्ति उपरांत शारीरिक रूप में स्वर्ग की ओर उठाई जाती है। इन कलाकृतियों को हम प्रकाशना ग्रंथ की पुस्तिका में वर्णित दृश्य से प्रभावित पाते हैं, जिसे हमने पहले पाठ में सुना। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। यह हमारे लिए इस बात की ओर इंगित कराता है कि मरियम के हृदय में स्वर्ग और पृथ्वी, समय और अनंत का मिलन होता है। इस पृथ्वी पर यह निशानी हमारे समय के बीतते अनुभवों के संग विरोधाभाव जान पड़ती है। जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं, हमारे शरीर फुर्तीले नहीं रह जाते हैं, हमारी त्वचा ताजी नहीं रह जाती है, बल्कि हम उनमें बुढ़ापे की निशानी को पाते हैं। हमारे केश चमकदार नहीं रह जाते हैं, अपितु वे भूरे और सफेद हो जाते हैं। अतः कलिसियाओं की वेदी में प्रस्तुत किए गए सुंदर युवा नारी के संग हम अपनी कौन सी समानता को पाते हैं? संत पापा लियो ने कहा कि इस तथ्य को समझने हेतु हमें अपने को दो निशानियों के संग संयुक्त करने की जरूरत है, ईश्वर की माता का अनश्वर शरीर और उनका निष्कलंक हृदय। यह हृदय की पवित्रता है जो मरियम में और हम में ईश्वरीय कृपा में व्याप्त रहती है, जो पूरे व्यक्ति को प्रज्वलित और परिवर्तित करती है। यह हमें स्वर्गराज की महिमा में ले चलती है। मरियम का शरीर और आत्मा में महिमान्वित किया जाना हमें इस बात की शिक्षा देती है कि हमारी सच्ची सुंदरता बुढ़ापे की निशानी को छुपाने में नहीं है, लेकिन प्रेम की निशानी को व्यक्त करने में है, जो कभी खत्म नहीं होती, जिसका प्रभाव हमारे शरीर में भी होता है। इस मनोभाव से हम उन कई सौंदर्य के मानकों को पुनः देखने के लिए बुलाए जाते हैं जो ज्यादातर खुशीवादी और उपभोक्तावादी प्रकृति के हैं, जिन्हें दुनिया हम पर थोपती है। ये मानक हमें चिंतामय चाहत के उलझन में डाल देती हैं। फलस्वरूप हम अपनी शक्ति को उन चीजों में व्यय करते जो सदैव बनी नहीं रहती हैं। हम अपने रोज दिन के जीवन में उन लोगों से मिलते हैं जिनके चेहरे में उम्र और दुख चिन्हित हैं, यद्यपि वे स्थिरता, करुणा और शांति को अपने चारों ओर प्रसारित करते हैं। वैसे ही हम दूसरों को देखते हैं जो बाह्य रूप में सुंदर दिखते, लेकिन उनका हृदय कठोर और ठंडा है। सच्ची सुंदरता किन बातों में निहित है उन्हें देखना सहज है। वहीं दूसरी ओर हम अब तक एक परिवर्तन क्षमा और चंगाई की आवश्यकता को पाते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि यदि हम सच्चे अर्थ में दिव्य सुंदरता को खोजना और उसे अपने में पोषित करने की चाह रखते हैं, जो हमें घेरे रहती है और जिसके लिए हम बनाए गए हैं, जिसे हमें दूसरों के संग साझा करना है, तो हमें उसे एक बुजुर्ग की झुर्रियों और एक बालक के कोमल चेहरे में देखने हेतु सीखने की जरूरत है। हम उसे एक प्रौढ़ व्यक्ति में और एक युवा के जीवन की सजीवता में, उसे कपड़ों और औजार साथ ही त्योहारों के श्रृंगारों में देखने की जरूरत है। हमें उन्हें अद्वितीय प्रेम की कहानियों में सुनने की जरूरत है, जो सच्चाइयों को हमें बतलाते हैं, जहां हम स्वर्ग की छोटी झलकों को पहचानते हैं। प्रेम मानव का अति सुंदर श्रृंगार है। प्रेम हमें रूपांतरित करता, बदलता, योग्य बनाता और हमें ऊपर उठाता है। यह हमें भार विहीन, स्वतंत्र और ईश्वर के निकट लाता है, यहाँ तक कि हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में भी। संत पापा ने कहा, स्वर्गोद्ग्रहण के रहस्य पर चिंतन करते हुए उसके अर्थ को समझने हेतु संत पापा पॉल छठवें कहते हैं कि हम पृथ्वी और भौतिक भाषा में उपयोग की जाने वाली अपनी अभिव्यक्तियों को अतिशयोक्ति और पूर्णता में बदलें, जिससे हम दिव्य की कल्पना एक छोटे रूप में कर सकें। ईश्वर की माता में अलौकिक और लौकिक के बीच मिलन के संबंध में संत पापा फ्रांसिस लिखते हैं, मरियम एक अस्तबल को यीशु के घर में बदलने की योग्यता रखती, जिसमें गरीब बच्चे को लपेटने का एक वस्त्र और एक अपार प्रेम था। संत पापा ने कहा कि नाजरेत की कुमारी मरियम ने जिस चमत्कार को अपने निर्दोष हृदय में अनुभव किया, जो चरम सीमाओं का मिलन है, वह उसे स्वर्ग की महिमा हेतु अग्रसर करता है, जैसे कि वह अपने ईश महिमा में व्यक्त करती है। इस ईश गुणगान में अपने नम्र विश्वास की अभिव्यक्ति द्वारा ईश्वर की माता हमें अपनी सरलता में महिमामय रहस्य को व्यक्त करती है, जैसे कि ईश्वर उनमें मानव बने, जिससे वे मानवता को बचा सकें। इस तरह दिव्य समय के साथ मुक्ति के मार्ग को हमारे लिए वे खोलते हैं। इसके साथ ही एक नम्र सेविका के रूप में संत पापा पॉल छठवें कहते हैं कि मरियम हमारे लिए नम्र आयाम को व्यक्त करती है, जिसके द्वारा हमारा मेल भी ईश्वर से हो सकता है। जिस रहस्य का हम आनंद मनाते हैं, संत पापा ने कहा, उसकी महानता को जानने

आपसे परे जाने को तैयार रहते हैं। अंततः बहुत सारे नर नारियों के दैनिक जीवन में विश्वास और समर्पण इस पृथ्वी पर स्वर्ग को और स्वर्ग को पृथ्वी के निकट लाती है। प्रिय मित्रों, संत पापा लियो ने कहा, स्वर्गोद्ग्रहण में हमारी कुमारी मरियम का चेहरा अद्वितीय है। यह किसी भी संभव स्वरूप की प्रस्तुति से परे है और इसके बावजूद यह हमारे लिए परिचित है। हम उनके चेहरे को अपनी बगल में बैठे व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं, उन भाई बहनों में जिनके संग हम विश्वास में अपने जीवन को साझा करते हैं। यही कारण है कि विश्वासियों का समुदाय उस नारी को प्रकाशन की पुस्तिका में देखता है और द्वितीय वैटिकन महासभा मरियम की व्याख्या कलिसियाई शुरुआत के निशानी स्वरूप देखती है, आशा और सांत्वना की एक निश्चित निशानी स्वरूप। उनके मानवीय प्रकृति में ईश्वर की कृपा से हम अपने स्वरूप को देखते हैं, अतः हम भी उस कृपापूर्ण जीवन को जीने हेतु बुलाए गए हैं जिसे उन्होंने जिया और अपनी महिमा में साझा किया। ख्रिस्त के पुनरुत्थान की चर्चा करते हुए संत अगस्टिन ख्रिस्तियों से आग्रह करते हैं कि वे उसे अपने जीवन की दिशा और केंद्र बिंदु बनाएं। वे कहते हैं, ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे जिससे वे पुनः ना मारे, हम दिशा बदल सकें, ज्योति का अनुसरण करें, उसी स्थान से उठने की शुरुआत करें जहां से वे उठे। संत पापा लियो ने कहा कि आइए हम इस निमंत्रण को स्वीकार करें, हम उस पुनर्जीवित यीशु की ज्योति का अनुसरण करें और अपने जीवन यात्रा को बदलें यदि ऐसा करने की जरूरत है। हम विशेष रूप से आज ऐसा करें मरियम की ओर निहारते हुए, जिन्हें ईश्वर ने शरीर और आत्मा में महिमान्वित किया है और जिसे उन्होंने माता निर्देशिका हमारी जीवन यात्रा में मित्र और स्वर्ग राज्य के मार्ग में एक संरक्षिका के रूप में दिया है।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कुंवारी मरियम के स्वर्गोत ग्रहण महापर्व के अवसर पर पोप लियो चौदहवें ने चिंतन किया कि यह मानव के अंतिम लक्ष्य अनंत जीवन को प्रकट करता है। पोप लियो चौदहवें ने 15 अगस्त कुंवारी मरियम के स्वर्गोत ग्रहण महापर्व के अवसर पर कस्तिल गंदोल्फो में देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। उन्होंने प्रार्थना से पहले विश्वासियों को संबोधित कर कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम धन्य कुंवारी मरियम के स्वर्गोत ग्रहण का महापर्व मना रहे हैं। पोप ने इस विश्वास के रहस्य पर चिंतन करने के लिए उन दो प्रतीकात्मक मॉडल को प्रस्तुत किया जिनका इस्तेमाल कलाकारों ने सदियों से इस घटना को दिखाने के लिए किया है। पहला, ईश माता के निद्रावस्था की तस्वीर। उन्हें एक ताबूत पर लेटे हुए मौत की नींद सोते हुए दिखाया गया है। उनके चारों ओर प्रेरित प्रार्थना की मुद्रा में उनका सम्मान करते हैं और बीच में पुनर्जीवित येसु हैं, जो एक नवजात शिशु की तरह मरियम की आत्मा को अपनी गोद में लिए हुए हैं। संत पापा ने कहा, येसु उन्हें ईश्वर की महिमा में अपने साथ ले गए, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। इस तरह प्रभु ने अपनी माँ के लिए वह वादा पूरा किया जो उन्होंने अपने सभी मित्रों से किया था, मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने

0: यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। संत पापा ने कहा, पहला मॉडल उस मुख्य सच्चाई को दिखाता है कि मरने और पुनर्जीवित होने के बाद ख्रिस्त ही हमें उस मंजिल तक ले जाते हैं जिसके लिए हमें बनाया गया है, अर्थात अनंत जीवन। हाल में बनी तस्वीर जो पश्चिम में विकसित हुई है, कुंवारी मरियम को पूरे कद में स्वर्ग में रोशनी से लिपटी हुई दूतों और संतों के बीच दिखाती है। तस्वीर के केंद्र में कुंवारी मरियम का महिमा मंडित शरीर है, जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है। संत पापा ने गौर किया कि कुछ कलाकारों ने दोनों विचारों को मिलाकर तस्वीर के ऊपरी भाग में महिमा मंडित माता मरियम को दिखाया है और नीचे उनकी खाली कब्र को, जो अक्सर रंग बिरंगे फूलों से भरी है और स्वर्ग में प्रेरित उन्हें देख रहे हैं। दूसरे मॉडल के बारे बतलाते हुए संत पापा ने कहा, दूसरा मॉडल उस सच्चाई को दिखलाता है कि मरियम शरीर और आत्मा के साथ स्वर्ग उठा ली गई अपने व्यक्तित्व की संपूर्णता में। महिला जिसने पृथ्वी पर शब्द के शरीर धारण में मांस और रक्त दिया और प्रेम बलिदान में पूरी तरह एक होने तक उनका अनुसरण किया और फिर उनके द्वारा हमेशा के लिए महिमा में ले ली गई। संत पापा ने कहा कि यह तस्वीर हमें अपने अंतिम लक्ष्य के बारे चिंतन करने का मौका देती है। देवदूत प्रार्थना के बाद संत पापा ने उन सभी लोगों को मरियम की मध्यस्थता को सपोर्ट किया जिन्हें आशा और सांत्वना की आवश्यकता है। पोप ने हाल ही में आए भूकंप से प्रभावित कोलंबिया के लोगों के लिए भी अपनी प्रार्थना दोहराई। भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस रोम स्थित भारतीय दूतावास में देशभक्ति एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारतीय समुदाय के सदस्य, दूतावास के अधिकारी और खास मेहमान इस ऐतिहासिक मौके को मनाने के लिए एकत्रित हुए। इटली और सन मरीनो में भारत की राजदूत वाणी राव ने सुबह 8 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया गया, जिससे माहौल देश की आजादी और तरक्की के लिए गर्व एवं आभार से भर गया। अपने भाषण में राजदूत राव ने इटली में रहने वाले भारतीय समुदाय की सेवा और समर्थन के लिए दूतावास के चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए भारत और इटली के बीच मजबूत एवं बढ़ते संबंधों के बारे में चर्चा की।
1: पापुआ न्यू गिनी में 14 से 17 अगस्त तक बोगनविले धर्म प्रांत के उत्तरी क्षेत्र में कैथोलिक मिशनरी उपस्थिति का 125वां साल गिरह मना रहा है। कलीसिया ने देश में एक सदी से भी ज्यादा समय तक मुश्किलों और लड़ाइयों का सामना किया है और यह 35 पल्लियों में 2 लाख से ज्यादा कैथोलिकों का एक जीवंत स्थानीय समुदाय के तौर पर विकसित हुआ है। पापुआ न्यू गिनी दुनिया के सबसे ज्यादा सांस्कृतिक रूप से अलग अलग तरह के देशों में से एक है, जहां 800 से ज्यादा भाषाएं और कई जाति और आदिवासी समुदाय है जो एक दूसरे से भिन्न है और गहरी एकता का जरिया है। उधर आज सुबह शनिवार पूर्वी इंडोनेशिया में आए 7.7 तीव्रता वाले भूकंप में मरने वालों की संख्या कम से कम 38 हो गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के नए अपडेट के मुताबिक 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 11 अन्य को मामूली चोटें आई हैं और लगभग 2000 लोग बेघर हो गए हैं। भूकंप का केंद्र फ्लोरेंस द्वीप के पास इंडे शहर से लगभग 68 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर की गहराई पर था। अधिकारियों ने शुरू में कई प्रांतों के लिए सुनामी की चेतावनी दी थी और तटीय इलाकों के लोगों से ऊंची जगहों पर जाने को कहा था। बाद में निगरानी प्रणालियों द्वारा समुद्र के स्तर पर कोई खास बदलाव न पाए जाने पर चेतावनी हटा ली गई। बिजली जाने और संचार की दिक्कतों के कारण जानकारी इकट्ठा करने और खोज एवं बचाव कार्य धीमे चल रहे हैं। कई हॉस्पिटल से मरीजों को सावधानी के तौर पर बाहर निकाला गया और कुछ समय के लिए इलाज की जगहें बनाई गईं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने भी मदद पहुंचाने और मुश्किल जगहों से लोगों को निकालने में मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा। उधर यूक्रेन की नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर पिछले महीने संघर्ष से 183 यूक्रेनी बच्चे प्रभावित हुए। जून की तुलना में जब 127 पीड़ित थे, यह 50% की बढ़ोतरी दिखाता है और जमीन पर युद्ध बिना रुके जारी है। यूक्रेन के मारहेंस शहर में एक रिहायशी भवन पर हुए रूसी हमले में एक 3 महीने के बच्चे की मौत हो गई। एक नवजात एक ऐसे युद्ध का सबसे नया शिकार जो सबसे छोटे बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है। इस हमले में 11 और लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 7 को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें 2 और छोटे बच्चे भी हैं, 5 और 12 साल के। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि हाल के हमलों में सबसे छोटे बच्चों को निशाना बनाया गया। अकेले जुलाई में रूसी युद्ध के कारण यूक्रेन में 183 बच्चे मारे गए या घायल हुए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: क्रूस का चिन्ह,
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
0: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: अमृत को कन्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य

0: तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद के दूसरा भेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है।
1: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे।

0: अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
1: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
2: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत।

0: सदा बने रहेंगे, आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु येसु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
1: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु येसु मंदिर में पाए जाते हैं,
1: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: पिता।
1: पन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभु के अनमोल रक्त की मिशनरी धम बहनों के मिशन के बारे चर्चा कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आज दुनिया भर में बाढ़ की समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है। किसी भी क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ जाती है, बाढ़ से घर ढह जाते और जान माल की अत्यधिक क्षति होती है। लोग बेघर हो जाते हैं और जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो और लिम्पोपो क्षेत्र में रहने वाले लोग हर वर्ष आने वाले भीषण बाढ़ से लगातार प्रभावित होते हैं। वहां प्रभु के अनमोल रक्त की मिशनरी

बहनें पिछले एक दशक से समर्पित भाव से सेवा कर रही हैं। जब भी बाढ़ जैसी आपदा आती है, धम्म बहनें तुरंत राहत और सेवा कार्यों में जुट जाती हैं और पीड़ित परिवारों तक भोजन, आवश्यक सामग्री एवं अन्य ठोस सहायता पहुंचाकर उनके दुख को कम करने का प्रयास करती हैं। पिछले कुछ सालों में उनका मिशन देश के कई प्रांतों में फैल गया है, जिसमें मापूटो, गाजा, तेते और नकाला शामिल हैं। धम्म बहनें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सेवा और प्रेरिताई कार्यों के माध्यम से सेवा करती हैं। साथ ही अनाथ और कमजोर बच्चों, बुजुर्गों, कुपोषित लोगों और एचआईवी से पीड़ित लोगों के लिए कार्यक्रम चलाती हैं। वे समग्र मानव विकास को बढ़ावा देती और मुश्किलों का सामना कर रहे समुदायों में उम्मीद जगाने के लिए काम करती हैं। धम्म बहनें समाज के सबसे कमजोर लोगों की सेवा करने, पिछड़े लोगों तक पहुंचने और हर इंसान की गरिमा को बढ़ावा देने हेतु समर्पित हैं। रीजनल सुपीरियर सिस्टर लीजा अल्बर्टो मुयांगा ने जुलाई में वैटिकन न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा, जाय जाय जिले के गजा प्रांत के कुछ हिस्सों में भयंकर बाढ़ आ गई है, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं और उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। कई समुदायों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि बढ़ते पानी ने उनके आसपास के माहौल को असुरक्षित बना दिया है। इन परिस्थितियों के जवाब में धम्म बहनों ने मुश्किल हालात में रहने वालों की मदद करना शुरू किया है। पीड़ितों की सुरक्षा के लिए स्कूलों को शरण स्थानों में स्थानांतरित कर दिया है और धम्म बहनों ने अपने आस पड़ोस में सबसे ज्यादा जरूरतमंद इलाकों का पहचान किया है और शरण लेने वाले लगभग 1600 बेघर लोगों की मदद कर रही हैं। कई लोग अपने पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ नहीं ला पाए। अपने घर, सामान और रोजी रोटी के साधन खोने के बाद वे बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। आवश्यकता को समझते हुए धम्म बहनें पीड़ितों के लिए खाने का इंतजाम कर रही हैं, अपने कॉन्वेंट में खाना बनाकर उसे केंद्रों तक पहुँचाती और बेघर परिवारों में बांटती हैं। मानवता का यह काम सिर्फ धम्म बहनों तक सीमित नहीं है। उनके समर्पण और दया से प्रेरित होकर कई स्थानीय महिलाएं उनकी कोशिशों में शामिल हो गई हैं और खाना बनाने तथा उन्हें बांटने में मदद करने के लिए स्वेच्छा से अपना समय दे रही हैं। धम्म बहनों ने खाने और रहने की जगह के अलावा दूसरी आवश्यकताओं जैसे साफ सफाई की चीजें और कपड़ों का इंतजाम एवं पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। शरण स्थानों पर गद्दे बिछाए ताकि परिवार बाढ़ का पानी कम होने और जीवन फिर शुरू करने का इंतजार करते हुए आराम कर सकें। वे स्थानीय समुदायों और सहभागी संगठनों के बीच भी जागरूकता फैलाती हैं और सबसे आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए मदद की अपील करती हैं। सिस्टर लीजा कहती हैं, शरण केंद्रों में धम्म बहनें बेघर परिवारों की चिंताओं को सुनने और उनकी सबसे जरूरी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए समय निकालती हैं। उनकी उपस्थिति से लोगों को राहत मिलता है और उनका संघर्ष आसान हो जाता है। दुख की इस घड़ी में धम्म बहनों की उपस्थिति आशा की किरण बन गई है। उनकी प्रतिबद्धता उनके करिश्मे को दर्शाती है, जिसमें वे हाशिए पर पड़े लोगों और पीड़ित लोगों के साथ खड़ी होती हैं। जहां निराशा हो वहां सम्मान बहाल करती हैं। इस तरह प्रभु के अनमोल रक्त की मिशनरी धम्म बहनों के कार्यों से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी छोटी सी मदद और प्रार्थना अनेक लोगों के जीवन में आशा की ज्योति जला सकती है। प्रभु हमें जरूरतमंदों की सेवा करने और उनके दुख में सहभागी होने का अवसर देते हैं। अतः आइए हम भी अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की मदद कर मानवता एवं प्रेम का संदेश फैलाएं। यही सच्ची ख्रिस्ती भावना है जो हमें प्रभु के प्रेम को कर्मों के द्वारा प्रकट करने के लिए प्रेरित करती है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम में हम प्रभु के अनमोल रक्त की मिशनरी धम्म बहनों की सेवा के बारे सुन रहे थे, जिसको सिस्टर क्रिस्टीन मासिवो SPS ने लिखा है। और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका क्षमा। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओ, क्षमाशीलता के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। यह एक दिव्य गुण माना जाता है और जहाँ तक मुझे पता है विश्व के सभी धर्म इसका समर्थन करते हैं। अक्सर क्षमा सर्वोत्तम कृत्य होता है। यह आप पर से एक बोझ हटा देता है जिसे आप हल्का महसूस करते हैं, परंतु क्षमा करना सदैव आसान नहीं होता। यह सीधे आपके अहम पर वार करता है। जब कोई और आपसे क्षमा याचना करता है तब आप संभवतः क्षमा कर देते हैं, परंतु आप स्वयं को आसानी से क्षमा क्यों नहीं कर पाते हैं? स्वयं पर इतना निर्दयी न बने, क्षमाशील बने। स्वयं से शुरू करें, अपने आप के साथ स्नेह और करुणामय बने। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका क्षमा।
1: अब आज छुट्टी के दिन भर पेपर ही पढ़ते रहेंगे या कोई और काम करना है आज?
2: शोभा, तुम भी ना, लगता है तुम्हें मेरी छुट्टी का दिन पसंद नहीं है। तभी तो मेरी छुट्टी के दिन आराम करना तुम्हें अखर्रा।
1: क्या बात करते हैं आप भी।
2: नहीं नहीं, अगर तुम कहो तो मैं तो छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ। तुम कहकर तो देखो।
1: मुझे क्या पड़ी है आपको छुट्टी के दिन भी ऑफिस भेजूं। मैं तो ये कह रही थी कि बाजार वगैरह चलना है क्या, कुछ सामान खरीदना है कि नहीं?
2: तो ऐसा क्यों नहीं कहती तुम?
1: चलो, आपके समझ में आ गया, मेरे लिए उतना ही काफी है।
2: ओहो, तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे कुछ समझ में नहीं आता?
1: मेरा ये मतलब नहीं था।
2: फिर?
1: आपकी समझदारी तो बहुत अच्छी है, जिसमें सब कुछ जल्दी समझ आता है ना।
2: तुम्हारे लाडले संकेत के समझ में भी कुछ नहीं आता?
1: हाय, अब क्या किया है उसने?
2: अभी तो कुछ नहीं किया है, मगर उसे कुछ करने में समय ही कितना लगता है। अब उस दिन की बात ले लो, क्या जरूरत थी संकेत को पंडित जी की लड़की को छेड़ने की? क्यों छेड़ा था उसने?
1: आप भी कमाल करते हैं। अरे, उसने लड़की को कहाँ छेड़ा था, ये मैं कैसे बता सकती हूँ? ये तो वो लड़की बता सकती है या फिर हमारा बेटा संकेत, कि उसने पंडित जी की लड़की को क्यों छेड़ा था।
2: तुम भी ऐसे कह रही हो जैसे संकेत ने बहुत अच्छा काम किया है। क्यों? अरे, उसकी अकल में ये बात कब आएगी कि उसकी खुद की भी एक जवान बहन है?
1: मुझे नहीं लगता कि संकेत अब ऐसा कुछ करेगा। अब कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे हैं, यार दोस्तों में रहते हैं तो कुछ मस्ती मजाक कर लेते हैं।
2: मस्ती मजाक कर लेते हैं, अब जवानों की मस्ती मजाक का क्या यही साधन बचा है कि किसी की बेटी को छेड़ा जाए?
1: अब छोड़ो भी, जो हो गया उस पर छोड़ो उसे। मैंने संकेत को भी समझा दिया है, वो अब ऐसा नहीं करेगा बस।
2: अब वो भले ही ऐसा ना करे, लेकिन जो वो कर चुका है पंडित जी की लड़की के साथ बदतमीजी, क्या वो कोई गर्व करने लायक कारनामा है उसका? क्या उससे नाक ऊंची हो गई हमारी?
1: आप भी क्या बात करते रहते
2: मैं
1: हैं।
2: वही बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे लाडले ने हमारी इज्जत धूल में मिला दी।
1: अरे, क्या बात करते हैं आप। किसी की लड़की को छेड़ देने से अगर अपनी इज्जत धूल में मिल जाए करती है, तो फिर किसी की लड़की को लेकर भाग जाने से क्या इज्जत बढ़ जाती है और नाक ऊंची हो जाती है?
2: किसकी बात कर रही हो तुम?
1: वो मोड़ वाले जगन्नाथ जी की। आखिर उनका लड़का तो सक्सेना जी की लड़की को लेकर भाग गया, मगर फिर भी वो तो सर उठाए घूमते हैं ना।
2: तुम औरतों में यही आदत सबसे बेकार होती है।
1: कौन सी आदत होती
2: यही
1: है?
2: अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरे की गलती को बताना। तुम क्या समझती हो, क्या दूसरे की गलती बताने से अपनी गलती छिप जाती है?
1: मैं अपनी गलती छिपा नहीं रही हूँ, मैं तो दूसरों की बात बता रही हूँ बस।
2: ये आदत बंद कर दो तुम। इससे ही हमारे बच्चों को शह मिली है और वे यही सोचकर गलत काम को निसंकोच करते हैं कि दूसरे भी तो ऐसा ही करते हैं। वो तो गनीमत समझो कि मैंने संकेत से उस लड़की

0: हाँ, उनकी जगह मैं होता तो मैं तो अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत करने वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ता, बल्कि उसे पुलिस के हवाले करके ही मानता।
1: अब यहाँ भी देख लो, आप में और पंडित जी में कितना अंतर है।
0: अब आदमी आदमी में स्वभाव का फर्क तो होता ही है। चलो, तुम्हारे बाजार का क्या काम है निपटा देते हैं।

0: अच्छा, शुक्ला भाई साहब, नमस्कार, आइए।
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: भाभी,
0: भाभी,
1: नमस्कार। कहाँ है श्रीवास बाबू?
0: अंदर है ना, आइए। अरे अरे, जूते चप्पल चलेंगे, ऐसे ही आ जाइए आप तो।
2: नमस्कार भाई साहब।
1: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: क्या हो गया श्रीवास बाबू? सुना था 2 दिन आप हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे।
3: हाँ, रहना पड़ा शुक्ला जी।
1: अब कैसे हैं आप?
3: अब तो ठीक हूँ शुक्ला जी, ईश्वर की दया है।
0: वो तो बच गए भाई साहब, वरना न जाने क्या हो जाता।
1: आखिर हुआ क्या था बहन जी?
2: कोई बड़ी बात हो गई थी।
0: अब बड़ी घटना ही समझो। हुआ ये था कि हमारी बेटी पलक को एक लड़के ने छेड़ दिया, फिर वह अक्सर पलक को परेशान करने लगा था। तब पलक ने इनको बताया ये सब। जब लड़के को इनको पता हो जाने के बारे में पता चला, तो वो आकर पलक और इनसे माफी मांग रहा था। पलक और मैं तो उसे क्षमा कर देने के पक्ष में ही थे भाई साहब,
1: हाँ, ऐसी बातों को तुरंत निपटा लेना चाहिए।
0: मगर ये उस लड़के को क्षमा करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। ये तो इतने गुस्से में भरे थे कि सीधे थाने जाकर ही सांस ली और उस लड़के के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी थी।
2: हे भगवान, फिर?
0: फिर क्या, लड़की का मामला था भैया। फिर इन्होंने अपने विधायक से भी थाने पर फोन करवाया था और पुलिस को उस लड़के को हवालात में बंद करना ही पड़ा था।
1: फिर लड़के वालों ने क्या कहा?
0: अरे, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, क्योंकि जब उन्होंने इनसे ये कहा कि आपके लड़के ने भी तो पंडित जी की लड़की को दोस्तों के साथ मिलकर छेड़ा था, और आपके लड़के की लड़की और उसके बाप से क्षमा मांगने पर उन दोनों बाप बेटी ने भी तो आपके लड़के को माफ कर दिया था ना, तो आप भी बच्चे की गलती समझकर भूल जाइए, क्षमा कर दीजिए उसे।
2: हाँ, और क्या, किस किस से बुराई लेना।
0: यही मैंने भी समझाया था इन्हें, मगर ये किसी की सुने तब ना, ये नहीं माने। इन्होंने उस लड़के को क्षमा नहीं किया और पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। उस लड़के को पुलिस से पिटवा कर हवालात में बंद करवा दिया था इन्होंने।
2: ओ,
0: जब लड़के के मामा को ये सब पता चला, तो 3 दिन पहले उसने इनको सड़क पर रोक लिया था और उन्हें संकेत के माफी मांगने और माफ कर दिए जाने की बात याद दिलाई थी। फिर इनसे पूछा कि क्या ऐसी क्षमा ये उसके भांजे को नहीं दे सकते थे। जब इनके बच्चे को किसी ने क्षमा कर दिया, तो क्या ये भी किसी को माफ नहीं कर सकते हैं? क्यों राधा?
1: बिल्कुल कर सकते थे।
0: बस इसी बात पर लड़के के मामा और उसके साथियों ने इनकी पिटाई करवा दी। वो तो अच्छा हुआ ज्यादा नहीं मारा इन्हें, नहीं तो न जाने कहाँ कहाँ और कैसी कैसी चोटें आती इनको।
1: बुरा मत मानना श्रीवास बाबू, अगर आपके बेटे को किसी ने क्षमा कर दिया था तो आपको भी उस लड़के को माफ कर देना था, मगर आपने ऐसा न करके उसे हवालत की हवा खिला दी।
2: ये बात बिल्कुल सही है भाई साहब, कि आप किसी को माफ करेंगे तो आपको भी कोई माफ करेगा।
1: हाँ, अगर आप किसी को सच्चे दिल से क्षमा करते हैं तो ईश्वर भी आपकी गलती पर आपको क्षमा कर देगा, क्योंकि अगर आपको क्षमा मिली है तो आप भी किसी को क्षमा कीजिए। ये बात हमेशा याद रखने वाली बात है।
0: यही बात मैंने भी कही थी इनसे, मगर ये नहीं माने। पर शायद अब तो इनको भी सबक मिल गया होगा और अब ये भी यही करेंगे। क्यों जी?
3: बिल्कुल, अब मैं भी क्षमा के बदले क्षमा में ही यकीन रखता हूँ।
4: क्षमा, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे मेरी प्रीति जोजो, अपर्णा सिंह, पीटर जमरा और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभु के अनमोल रक्त की मिशनरी धम बहनों के मिशन के बारे चर्चा कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आज दुनिया भर में बाढ़ की समस्या बहुत अधिक बढ़ गई है। किसी भी क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ जाती है, बाढ़ से घर ढह जाते और जान माल की अत्यधिक क्षति होती है। लोग बेघर हो जाते हैं और जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मोजाम्बिक की राजधानी मापूटो और लिम्पोपो क्षेत्र में रहने वाले लोग हर वर्ष आने वाले भीषण बाढ़ से लगातार प्रभावित होते हैं। वहाँ प्रभु के अनमोल रक्त की मिशनरी धम बहने पिछले एक दशक से समर्पित भाव से सेवा कर रही हैं। जब भी बाढ़ जैसी आपदा आती है, धम बहने तुरंत राहत और सेवा कार्यों में जुट जाती हैं और पीड़ित परिवारों तक भोजन, आवश्यक सामग्री एवं अन्य ठोस सहायता पहुंचाकर उनके दुख को कम करने का प्रयास करती हैं। पिछले कुछ सालों में उनका मिशन देश के कई प्रांतों में फैल गया है, जिसमें मापूटो, गाजा, तेते और नकाला शामिल हैं। धम बहने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सेवा और प्रेरिताई कार्यों के माध्यम से सेवा करती हैं। साथ ही अनाथ और कमजोर बच्चों, बुजुर्गों, कुपोषित लोगों और एचआईवी से पीड़ित लोगों के लिए कार्यक्रम चलाती हैं। वे समग्र मानव विकास को बढ़ावा देती और मुश्किलों का सामना कर रहे समुदायों में उम्मीद जगाने के लिए काम करती हैं। धम बहने समाज के सबसे कमजोर लोगों की सेवा करने, पिछड़े लोगों तक पहुंचने और हर इंसान की गरिमा को बढ़ावा देने हेतु समर्पित हैं। रीजनल सुपीरियर सिस्टर लीजा अल्बर्टो मुयांगा ने जुलाई में वैटिकन न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा, जाय जाय जिले के गजा प्रांत के कुछ हिस्सों में भयंकर बाढ़ आ गई है, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं और उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। कई समुदायों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि बढ़ते पानी ने उनके आसपास के माहौल को असुरक्षित बना दिया है। इन परिस्थितियों के जवाब में धम बहनों ने मुश्किल हालात में रहने वालों की मदद करना शुरू किया है। पीड़ितों की सुरक्षा के लिए स्कूलों को शरण स्थानों में स्थानांतरित कर दिया है और धम बहनों ने अपने आस पड़ोस में सबसे ज्यादा जरूरतमंद इलाकों का पहचान किया है और शरण लेने वाले लगभग 1600 बेघर लोगों की मदद कर रही हैं। कई लोग अपने पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ नहीं ला पाए। अपने घर, सामान और रोजी रोटी के साधन खोने के बाद वे बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। आवश्यकता को समझते हुए धम बहने पीड़ितों के लिए खाने का इंतजाम कर रही हैं, अपने कॉन्वेंट में खाना बनाकर उसे केंद्रों तक पहुँचाती और बेघर परिवारों में बांटती हैं। मानवता का यह काम सिर्फ धम बहनों तक सीमित नहीं है। उनके समर्पण और दया से प्रेरित होकर कई स्थानीय महिलाएं उनकी कोशिशों में शामिल हो गई हैं और खाना बनाने तथा उन्हें बांटने में मदद करने के लिए स्वेच्छा से अपना समय दे रही हैं। धम बहनों ने खाने और रहने की जगह के अलावा दूसरी आवश्यकताओं जैसे साफ सफाई की चीजें और कपड़ों का इंतजाम एवं पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। शरण स्थानों पर गद्दे बिछाए ताकि परिवार बाढ़ का पानी कम होने और जीवन फिर शुरू करने का इंतजार करते हुए आराम कर सकें। वे स्थानीय समुदायों और सहभागी संगठनों के बीच भी जागरूकता फैलाती हैं और सबसे आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए मदद की अपील करती हैं। सिस्टर लीजा कहती हैं, शरण केंद्रों में धम बहने बेघर परिवारों की चिंताओं को सुनने और उनकी सबसे जरूरी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए समय निकालती हैं। उनकी उपस्थिति से लोगों को राहत मिलता है और उनका संघर्ष आसान हो जाता है। दुख की इस घड़ी में धम बहनों की उपस्थिति आशा की किरण बन गई है। उनकी प्रतिबद्धता उनके करिश्मे को दर्शाती है, जिसमें वे हाशिए पर पड़े लोगों और पीड़ित लोगों के साथ खड़ी होती हैं। जहाँ निराशा हो वहाँ सम्मान बहाल करती हैं। इस तरह प्रभु के अनमोल रक्त की मिशनरी धम बहनों के कार्यों से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी छोटी सी मदद और प्रार्थना अनेक लोगों के जीवन में आशा की ज्योति जला सकती है। प्रभु हमें जरूरतमंदों की सेवा करने और उनके दुख में सहभागी होने का अवसर देते हैं। अतः आइए हम भी अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की मदद कर मानवता एवं प्रेम का संदेश फैलाएं। यही सच्ची ख्रिस्ते भावना है जो हमें प्रभु के प्रेम को कर्मों के द्वारा प्रकट करने के लिए प्रेरित करती है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम में हम प्रभु के अनमोल रक्त की मिशनरी धम बहनों की सेवा के बारे सुन रहे थे, जिसको सिस्टर क्रिस्टीन मासीवो SPS ने लिखा है। और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका क्षमा। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओ, क्षमाशीलता के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। यह एक दिव्य गुण माना जाता है और जहाँ तक मुझे पता है विश्व के सभी धर्म इसका समर्थन करते हैं। अक्सर क्षमा सर्वोत्तम कृत्य होता है। यह आप पर से एक बोझ हटा देता है जिसे आप हल्का महसूस करते हैं। परंतु क्षमा करना सदैव आसान नहीं होता, यह सीधे आपके अहम पर वार करता है। जब कोई और आपसे क्षमा याचना करता है तब आप संभवतः क्षमा कर देते हैं, परंतु आप स्वयं को आसानी से क्षमा क्यों नहीं कर पाते हैं? स्वयं पर इतना निर्दयी न बने, क्षमाशील बने। स्वयं से शुरू करें, अपने आप के साथ स्नेह और करुणामय बने। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका क्षमा।
1: अब आज छुट्टी के दिन दिन भर पेपर ही पढ़ते रहेंगे या कोई और काम करना है आज?
2: शोभा, तुम भी ना, लगता है तुम्हें मेरी छुट्टी का दिन पसंद नहीं है। तभी तो मेरी छुट्टी के दिन आराम करना तुम्हें अखर रहा।
1: क्या बात करते हैं आप भी।
2: नहीं नहीं, अगर तुम कहो तो मैं तो छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ। तुम कहकर तो देखो।
1: मुझे क्या पड़ी है आपको छुट्टी के दिन भी ऑफिस भेजूं। मैं तो ये कह रही थी कि बाजार वगैरह चलना है क्या, कुछ सामान खरीदना है कि नहीं?
2: तो ऐसा क्यों नहीं कहती तुम?
1: चलो, आपके समझ में आ गया, मेरे लिए उतना ही काफी है।
2: ओहो, तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे कुछ समझ में नहीं आता?
1: मेरा ये मतलब नहीं था।
2: फिर?
1: आपकी समझदारी तो बहुत अच्छी है, जिसमें सब कुछ जल्दी समझ आता है ना।
2: तुम्हारे लाडले संकेत के समझ में भी कुछ नहीं आता।
1: हाय, अब क्या किया है उसने?
2: अभी तो कुछ नहीं किया है, मगर उसे कुछ करने में समय ही कितना लगता है। अब उस दिन की बात ले लो, क्या जरूरत थी संकेत को पंडित जी की लड़की को छेड़ने की? क्यों छेड़ा था उसने?
1: आप भी कमाल करते हैं। अरे, उसने लड़की को कहाँ छेड़ा था, ये मैं कैसे बता सकती हूँ? ये तो वो लड़की बता सकती है या फिर हमारा बेटा संकेत, कि उसने पंडित जी की लड़की को क्यों छेड़ा था।
2: तुम भी ऐसे कह रही हो जैसे संकेत ने बहुत अच्छा काम किया है। क्यों? अरे, उसकी अकल में ये बात कब आएगी कि उसकी खुद की भी एक जवान बहन है?
1: मुझे नहीं लगता कि संकेत अब ऐसा कुछ करेगा। अब कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे हैं, यार दोस्तों में रहते हैं तो कुछ मस्ती मजाक कर लेते हैं।
2: मस्ती मजाक कर लेते हैं, अब जवानों की मस्ती मजाक का क्या यही साधन बचा है कि किसी की बेटी को छेड़ा जाए?
1: अब छोड़ो भी, जो हो गया उस पर छोड़ो उसे। मैंने संकेत को भी समझा दिया है, वो अब ऐसा नहीं करेगा बस।
2: अब वो भले ही ऐसा ना करे, लेकिन जो वो कर चुका है पंडित जी की लड़की के साथ बदतमीजी, क्या वो कोई गर्व करने लायक कारनामा है उसका? क्या उससे नाक ऊंची होगी हमारी?
1: आप भी क्या बात करते रहते
2: मैं
1: हैं?
2: वही बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे लाडले ने हमारी इज्जत धूल में मिला दी।
1: अरे, क्या बात करते हैं आप। किसी की लड़की को छेड़ देने से अगर अपनी इज्जत धूल में मिल जाए करती है, तो फिर किसी की लड़की को लेकर भाग जाने से क्या इज्जत बढ़ जाती है और नाक ऊंची हो जाती है?
2: किसकी बात कर रही हो तुम?
1: वो मोड़ वाले जगन्नाथ जी की। आखिर उनका लड़का तो सक्सेना जी की लड़की को लेकर भाग गया, मगर फिर भी वो तो सर उठाए घूमते हैं ना।
2: तुम औरतों में यही आदत सबसे बेकार होती है।
1: कौन सी आदत होती
2: यही
1: है?
2: यही, अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरे की गलती को बताना। तुम क्या समझती हो, क्या दूसरे की गलती बताने से अपनी गलती छिप जाती है?
1: मैं अपनी गलती छिपा नहीं रही हूँ, मैं तो दूसरों की बात बता रही हूँ बस।
2: ये आदत बंद कर दो तुम, इससे ही हमारे बच्चों को शह मिली है और वे यही सोचकर गलत काम को निसंकोच करते हैं कि दूसरे भी तो ऐसा ही करते हैं। वो तो गनीमत समझो कि मैंने संकेत से उस लड़की को माफ़ी मांगने को कहा तो वो राज़ी हो गया, और ये भी बहुत अच्छा हुआ कि पंडित जी और पंडित जी की लड़की दोनों ने ही संकेत को क्षमा कर दिया, वरना अगर वे लोग पुलिस में रिपोर्ट कर देते तो हमारी इज्जत क्या रह जाती?
1: ये बात तो सच है, बेचारे पंडित जी बहुत ही सज्जन आदमी हैं, वरना उनकी जगह कोई दूसरा होता तो संकेत को तो क्षमा नहीं करता, क्योंकि उसकी हरकत ही ऐसी थी।
2: वही तो ये तो पंडित जी की सज्जनता ही थी जो उन्होंने संकेत को क्षमा कर मामले को ठंडा कर दिया, वरना उनकी जगह मैं होता तो मैं तो अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत करने वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ता, बल्कि उसे पुलिस के हवाले करके ही मानता।
1: अब यहाँ भी देख लो, आप में और पंडित जी में कितना अंतर है।
2: अब आदमी आदमी में स्वभाव का फर्क तो होता ही है। चलो तुम्हारे बाजार का क्या काम है निपटा देते हैं।

0: अच्छा, शुक्ला भाई साहब नमस्कार, आइए।
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: भाभी,
0: भाभी,
1: नमस्कार। कहाँ है श्रीवास बाबू?
0: अंदर है ना, आइए। अरे अरे, जूते चप्पल चलेंगे, ऐसे ही आ जाइए आप तो।
2: नमस्कार भाई साहब।
1: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: क्या हो गया श्रीवास बाबू? सुना था 2 दिन आप हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे।
3: हाँ, रहना पड़ा शुक्ला जी।
1: अब कैसे हैं आप?
3: अब तो ठीक हूँ शुक्ला जी, ईश्वर की दया है।
0: वो तो बच गए भाई साहब, वरना न जाने क्या हो जाता।
1: आखिर हुआ क्या था बहन जी?
2: कोई बड़ी बात हो गई थी।
0: अब बड़ी घटना ही समझो। हुआ ये था कि हमारी बेटी पलक को एक लड़के ने छेड़ दिया, फिर वह अक्सर पलक को परेशान करने लगा था। तब पलक ने इनको बताया ये सब। जब लड़के को इनको पता हो जाने के बारे में पता चला, तो वो आकर पलक और इनसे माफी मांग रहा था। पलक और मैं तो उसे क्षमा कर देने के पक्ष में ही थे भाई साहब,
1: हाँ, ऐसी बातों को तुरंत निपटा लेना चाहिए।
0: मगर ये उस लड़के को क्षमा करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। ये तो इतने गुस्से में भरे थे कि सीधे थाने जाकर ही सांस ली और उस लड़के के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी थी।
2: हे भगवान,
0: फिर क्या, लड़की का मामला था भैया। फिर इन्होंने अपने विधायक से भी थाने पर फोन करवाया था और पुलिस को उस लड़के को हवालात में बंद करना ही पड़ा था।
1: फिर लड़के वालों ने क्या कहा?
0: अरे, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, क्योंकि जब उन्होंने इनसे ये कहा कि आपके लड़के ने भी तो पंडित जी की लड़की को दोस्तों के साथ मिलकर छेड़ा था, और आपके लड़के की लड़की और उसके बाप से क्षमा मांगने पर उन दोनों बाप बेटी ने भी तो आपके लड़के को माफ कर दिया था ना, तो आप भी बच्चे की गलती समझकर भूल जाइए, क्षमा कर दीजिए उसे।
2: हाँ, और क्या, किस किस से बुराई लेना।
0: यही मैंने भी समझाया था इन्हें, मगर ये किसी की सुने तब ना, ये नहीं माने। इन्होंने उस लड़के को क्षमा नहीं किया और पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। उस लड़के को पुलिस से पिटवा कर हवालात में बंद करवा दिया था इन्होंने।
2: ओ,
0: जब लड़के के मामा को ये सब पता चला, तो 3 दिन पहले उसने इनको सड़क पर रोक लिया था और उन्हें संकेत के माफी मांगने और माफ कर दिए जाने की बात याद दिलाई थी। फिर इनसे पूछा कि क्या ऐसी क्षमा ये उसके भांजे को नहीं दे सकते थे। जब इनके बच्चे को किसी ने क्षमा कर दिया, तो क्या ये भी किसी को माफ नहीं कर सकते हैं? क्यों राधा?
1: बिल्कुल कर सकते थे।
0: बस इसी बात पर लड़के के मामा और उसके साथियों ने इनकी पिटाई करवा दी। वो तो अच्छा हुआ ज्यादा नहीं मारा इन्हें, नहीं तो न जाने कहाँ कहाँ और कैसी कैसी चोटें आती इनको।
1: बुरा मत मानना श्रीवास बाबू, अगर आपके बेटे को किसी ने क्षमा कर दिया था तो आपको भी उस लड़के को माफ कर देना था, मगर आपने ऐसा न करके उसे हवालत की हवा खिला दी।
2: ये बात बिल्कुल सही है भाई साहब, कि आप किसी को माफ करेंगे तो आपको भी कोई माफ करेगा।
1: हाँ, अगर आप किसी को सच्चे दिल से क्षमा करते हैं तो ईश्वर भी आपकी गलती पर आपको क्षमा कर देगा, क्योंकि अगर आपको क्षमा मिली है तो आप भी किसी को क्षमा कीजिए। ये बात हमेशा याद रखने वाली बात है।
0: यही बात मैंने भी कही थी इनसे, मगर ये नहीं माने। पर शायद अब तो इनको भी सबक मिल गया होगा और अब ये भी यही करेंगे, क्यों जी?
3: बिल्कुल, अब मैं भी क्षमा के बदले क्षमा में ही यकीन रखता हूँ।
4: क्षमा, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे मेरी प्रीति जोजो, अपर्णा सिंह, पीटर जमरा और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।